0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले 2 टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमरीका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी

इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स सामने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
2: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाए।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्ना रुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व

0: मिलेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्य वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में LVMH मोइट हेनेसी लुई विटो ACE के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, UAE, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है अमरीकी रक्षा बलों ने UAE के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर

0: मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
2: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC Under-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोकसत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज

बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: वेल म्यूजिकली योर सलाम नमस्ते सत श्री अकाल गुड मॉर्निंग जी हाँ बज गए 8:40 और आज है सुपर सुपर सैटरडे शो जो शुरू होने जा रहा है उसका नाम है हेलो मुंबई. मेरा नाम है आर जे कंचन और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल. शो की शुरुआत करते हैं कुछ शानदार जानदार अंदाज में.

यानी सैटरडे को पार्टी से जोड़ते हैं तो कुछ फैमिली टाइम से और कुछ सिर्फ लंबी नींद से। आप किस कैटेगरी में हैं? चलिए, अगर आपका दिल भी कह रहा है कि आज थोड़ा सा जी लेते हैं तो समझ जाइए सैटरडे यानी कि शनिवार अपना असर दिखा रहा है और दिल भी गाने के लिए कुछ ऐसा ही उत्सुक हो रहा है जैसा कि अभी हम सुनने जा रहे हैं। तो सुनते हैं।

ऑलराइट, बहुत सारे मैसेजेस आपके मैं इस वक्त पढ़ रही थी और बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब हमारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़ते हैं और अपने अपने मैसेजेस हमें भेजते हैं। वैसे जिन्हें नहीं पता है उनको हम बता दें कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071। और जैसा कि मैंने कहा कि आज है सुपर सुपर सैटरडे। अच्छा, जब वीकेंड आता है ना तो फ्राइडे को ऐसा लगता है कि चलिए अब सैटरडे मिलेगा, संडे मिलेगा, दो दिन का आराम मिलेगा। नॉट एवरीबडी हैज़ दैट लिबर्टी कि उनको आराम मिलने का, यू नो, हर किसी को वो प्रिविलेज नहीं होता है। लेकिन हाँ, जब अगर आपको मौका मिले, और सैटरडे खास करके मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा खास इसलिए भी होता है क्योंकि वीकेंड हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी सिर्फ काम करने के लिए नहीं, मुस्कुराने के लिए भी है। और रेडियो की दुनिया में सैटरडे यानी शनिवार का मतलब होता है दिल से बातें, यादों के गाने और मस्ती का डबल डोज। सो लेट्स लिसन टू

वैसे आज का सैटरडे उन पेरेंट्स के लिए भी बहुत ही स्पेशल है जिनके बच्चों के रिजल्ट्स आ गए. सो बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि एसएससी और एचएससी के रिजल्ट्स अब आ चुके हैं. पेरेंट्स की जान में जान आई है, बच्चे खुश हैं, वीकेंड चल रहा है, वेकेशन चल रहा है. और कहते हैं ना कि जब ऐसा थोड़ा सा एक रिलीफ का जब टाइम आता है तो बेस्ट होता है कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और एफएम रेनबो सुनते रहें. और क्योंकि कल है हैप्पी हैप्पी मदर्स डे, तो जितनी भी माओ ने अपने बच्चों का साथ दिया, सपोर्ट किया, उनके लिए खूब सारी दुआएं की, स्पेशली मदर्स के लिए हैप्पी मदर्स डे इन एडवांस. और आप सभी को डेडिकेटेड है ये गाना.

ऑलराइट, बात हो रही है सभी मदर्स की, तो सलाम आप सभी माओं को। और कहते हैं ना कि हर दिन ही मदर डे होता है, डेडिकेट करते हैं हम एक दिन को, क्योंकि खास उस दिन को बनाता है हम लोगों का स्नेह अपनी मदर्स की तरफ। और जितनी भी मदर्स इस वक्त सुन रही हैं मुझे, आप सभी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपको हमारी यानी एफएम रेनबो की तरफ से ढेर सारा अभिनंदन। यस, कभी सोचा है कि सैटरडे हमें इतना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में पॉज लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए आज से खुद से एक वादा कर लीजिए कि थोड़ा सा स्ट्रेस कम, ज़्यादा हैप्पीनेस, कम कंप्लेंट्स और ज़्यादा म्यूज़िक सुनेंगे आप। अच्छा, कुछ लोग जो हैं सैटरडेज़ को अक्सर शॉपिंग डे बना देते हैं और शॉपिंग के लिए चलते हैं। वैसे जब से ऑनलाइन का ज़माना आया है, काफ़ी सारे लोगों को उसमें भी थोड़ा सा लेज़ी हो जाते हैं। और जब लेज़ी की मैं बात कर रही हूँ, तो कई बार लेज़ी होना भी बहुत अच्छी बात होती है। सो सुनते हैं कुछ लेज़ी लम्हे।

जैसा कि हम बात करते हैं, एसएससी और एचएससी रिजल्ट्स आ गए हैं, तो मुंबई में, महाराष्ट्र में एसएससी के बाद अक्सर जूनियर कॉलेज ज्वाइन किया जाता है और कई बार ट्वेल्थ तक भी स्कूल होता है। लेकिन जो बच्चों ने एसएससी के एग्ज़ाम्स दिए हैं, अब आप एक नई उड़ान भरने जा रहे हैं, यानी कि कॉलेज में एंट्री लेंगे, यूनिफॉर्म से आप कलर्ड क्लोथ्स में आ जाएंगे, जो एकदम अपना कहते हैं ना कि आपका एक अंदाज बदल जाता है। लेकिन यकीन मानिए, जो स्कूल की जो आपके वैल्यूज़ होते हैं उसको इंस्टिल रख के इस दुनिया में कदम रखने में ही ज़्यादा समझदारी होती है। कई बार देखा जाता है कि 10th तक आपके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, सडनली एक ड्रॉप आ जाता है 11th के रिजल्ट्स में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें पेरेंट्स भी और बच्चे भी। वैसे ज्ञान देने का मेरा कोई मूड है नहीं। ऑल्सो एक और बात मुझे शेयर करनी थी कि बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा नंबर आते हैं, उनके 80s, 90s, और बहुत सारे बहुत खुशी की बात होती है। चाहे वो जो भी रिजल्ट्स हों, उनके पेरेंट्स की भी खुशी की बात होती है, स्टूडेंट्स की खुशी की बात होती है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के नंबर उतने ज़्यादा नहीं आ पाते हैं, यानी कि उनके थोड़े से एवरेज आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार ये स्टूडेंट्स शेल में चले आते हैं, इनके पेरेंट्स भी थोड़े से डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारे यहाँ पे आयाम हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ये जो मार्क्स होते हैं ये वाकई आपकी जो कहते हैं ना कि आपके टैलेंट का ये मापदंड नहीं साबित करते हैं। तो जहाँ तक हो सके बिल्कुल ही संतुलित ढंग से अपनी लाइफ को आगे लेकर जाएं, और इसमें उदास होने की कोई बात नहीं है कि मेरे नंबर

फ्रेंड से कम आए या फिर उसके ज़्यादा आ गए और मेरी कहीं कमी रह गई। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा किया था पर शायद नंबर आपके कम आ गए, तो वो भी एक थोड़ी सी कहते ना खलिश रह जाती है। लेकिन जस्ट टाइम टू मूव ऑन, सेलिब्रेट कीजिए ये वक्त। कहते ना जिंदगी में ये हर बार एक ही बार मौका आता है, और जितने भी लोगों के शायद नंबर उतने अच्छे नहीं रहे हों जिनको शायद रिपीट करना पड़े, आपको भी ऑल द बेस्ट। जैसे कि कहते हैं ना कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि अपॉर्चुनिटीज लाइफ में बहुत आती है, बस हमें कैसे उनको इनकैश करना है ये याद रखना है। और वैसे सैटरडेज की अगर हम बात करें तो स्कूल बहुत याद आता है, राइट? कई बार स्कूल में सेकंड या फोर्थ सैटरडे छुट्टी होती थी, या फिर कहिए तो हर सैटरडे भी छुट्टी हो जाती थी। और कहते हैं कि जब भी सैटरडेज आता था, मुझे वो वक्त याद है कि हमें फ्राइडे से ही लगने लग जाता था, बहुत गुड मूड में होते थे। सडनली हर कोई शुक्रवार को बहुत ही खुश नजर आता था, सारे बच्चे भी, कि चलो दो दिन का वीकेंड है। तो ये जो यादें होती हैं, ये हमारे टीवी शोज हो, रेडियो शोज हो, जो हम सुनते हैं, ये बहुत ही स्पेशल और खास रहता है। और जैसा कि मैंने कहा कि आज है सुपर सुपर सैटरडे, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल, मेरे यानी आरजे कंचन के साथ।

की होती है एक कहानी और एक कहानी की भी होती है अपनी ही एक कहानी, मूवी माइलस्टोन। हिंदी फिल्म जगत की कुछ अद्वितीय फिल्मों की दास्तां पद्मश्री भावना सोमाया के साथ 15 फरवरी 2026 से हर इतवार दोपहर 1 बजे FM रेनबो 107.1 FM पर मूवी माइलस्टोन।

हर आवाज की अपनी एक कहानी होती है और हर गाने में कुछ ना कुछ कहते ना एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज जरूर होता है। वैसे जाते जाते क्योंकि ठीक 10 बजे होंगे हिंदी में मुख्य समाचार, इस शो को करेंगे हम बाय बाय। और चलते चलते एक छोटी सी बात इसी शो के दौरान मैं कहना चाहूंगी कि जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन एक अच्छा गाना, एक प्यारी मुस्कान और अपने लोगों का साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एक बार फिर आप सभी को हैप्पी हैप्पी सैटरडे। और मेरे हैप्पीनेस की वजह भी एक और है, वो रहेगा एक सरप्राइज, उनसे मुलाकात होगी ठीक 10 बजे। सो कहीं जाइएगा नहीं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल, मेरे यानी आज कंचन के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: पेश है अभी तक के मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री तथा एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस समारोह में शामिल होने की संभावना है। समाचार में आगे, मुंबई उच्च न्यायालय ने कल महाराष्ट्र सरकार को महाराष्ट्र स्लम एरिया सुधार, स्वच्छता और पुनर्विकास अधिनियम 1971 के कार्यान्वयन के ऑडिट के लिए 4 सप्ताह में उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित करने का

निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेना की खंडपीठ ने आज मुंबई में स्लम पुनर्वास और न्याय नगर नियोजन की दयनीय प्रगति की आलोचना की, जबकि यह अधिनियम 5 दशकों से अधिक समय से लागू है। समाचार में आगे, खाड़ी क्षेत्र में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उन्हें सुरक्षा बलों ने ईरानी झंडे वाले 2 टैंकरों को रोक दिया जो अमेरिकी नौसेना नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहे थे। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। यह मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा।

0: ऑल राइट है सर, टूटे दिल के पेड़ सही ना जाए। और जब हम दिलों की बात करते हैं तो जब किसी अपने से मुलाकात होती है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। जैसे कि मैंने शो में पहले कहा कि एक सरप्राइज आने वाला है और वो सरप्राइज का खुलासा हम करने जा रहे हैं। सो अब हेलो आप सभी से करने जा रहे हैं मेरे बहुत ही प्रिय मित्र।
1: मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आरजे रवि शंकर। नमस्ते भारत कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम के तहत जो हम बातें करेंगे वो वैशा कंचन जी भी हमारे साथ हैं, तो इसके साथ सिलसिला जारी रहेगा। पहला गाना आप तक पहुंच रहा है ये।

0: स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम नमस्ते भारत में। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आरजे रविशंकर और साथ में है कंचन। नमस्ते भारत के तहत हम बात करने वाले हैं गर्मियों की। आजकल गर्मियों के छुट्टियों का सीजन चल रहा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इस गर्मियों में हम अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, किस तरह के चैलेंजेस हैं। गर्मी हमारे तन पर भी और मन पर भी कई तरह के असर डालता है। हम अपने जीवन शैली में बदलाव करके और जलवायु में किस तरह को हम जलवायु को किस तरह से देख सकते हैं, किस तरह से उसका ख्याल रख सकते हैं, तो वो हमारे जीवन पर रिफ्लेक्ट करेगा। तमाम बातें हम इसी तरह के बातों के इर्द गिर्द हमारा कार्यक्रम रहेगा। कंचन, इस बात पर अगर कुछ कहना चाहती हैं तो ज़रूर आप कुछ कहें।
1: यस रवि, गर्मियों की जब हम बात करते हैं तो सूरज अपने पूरे प्रकोप पर है आजकल, जैसा कि हमने कहा और आपने कहा कि तन और मन दोनों। सीरियसली फिजिकल की तो हम बात करते हैं लेकिन मेंटल हीट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, मुझे याद आता है हमारा बचपन, जब वो उस वक्त फ्रिज नया नया, मैं अगर अपनी बात करूँ तो उस ज़माने की अगर मैं बात करूँ तो फ्रिज तब तक आए नहीं थे सबके घर में, रेफ्रिजरेटर्स नहीं होते थे और बहुत ही हमें खुशी होती थी किसी के घर में अगर हमें ठंडा पानी बर्फ़ वाला मिल जाता था। लेकिन मेरे फादर क्या करते थे, वो मटका, एक वो जो घड़ा जो होता था मिट्टी का, वो घड़े के अंदर वो पानी भरते थे और बाहर उसके वो कपड़ा भी शायद लगा के रखते थे जिससे कि उसकी ठंडक बनी रहे। एंड यकीन मानिए रवि, उस जो पानी की मिठास है वो घड़े की, वो मटके की, वो आज भी मुझे याद आया। तो आपने बात की गर्मियों की तो मुझे याद आ गया मेरे बचपन का।
2: इसके साथ बिजली की भी बचत हो जाती थी।
1: सीरियसली,
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो अगला गाना हम यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। और साथ ही साथ अगर आपकी भी कुछ फरमाइश है तो जरूर हम यहाँ पे पूरा करेंगे, आप भेजिए, बिल्कुल भी हो सकता है।
1: बिल्कुल,
2: अगला गाना आप तक।

0: जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आरजे रविशंकर और साथ में है कंचन। हम बात कर रहे थे गर्मियों की, तो गर्मियों की छुट्टियों की बात तो हो गई और साथ में साथ हम अपने जीवन शैली में किस तरह से बदलाव करके या किस तरह से अपने जीवन शैली को अपने ख्याल रख करके हम गर्मियों से बच सकते हैं। तो सबसे पहले होता है रंगों का असर होता है, हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं उसका बहुत असर होता है हमारे गर्मी किस तरह से हमें प्रभावित करेगी। और साथ ही साथ हम अपने जो एयर कंडीशन का हम भी उपयोग करते हैं उसको हम कम से कम तापमान पर कोशिश करते हैं कि 16 डिग्री पे रहे, लेकिन हम ज़्यादातर करके अगर 24 पे रखें 22 पे रखें तो वो कहीं ना कहीं ऊर्जा को संरक्षित करता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। और आपने कही नमस्ते भारत चल रहा है, सो मुझे लगता है रवि हम सभी भारतीयों के पास ना एक चीज़ बहुत ही कॉमन होती होगी। बात कर रहे थे आप गर्मियों की और गर्मी की छुट्टियों की, तो रवि आपको आई डोंट नो, आप तो बहुत ही छोटे हैं अभी भी, लेकिन मुझे याद है जब हम लोग ट्रैवल करते थे हर गर्मी की छुट्टी में ना एक रिचुअल होता था कि हम अपने नानी के घर या दादी के घर जाते थे, शहर से दिल्ली से ट्रेन पकड़ते थे और वो पूरी फैमिली कहते हैं ना रस्ते भर वो क्योंकि गर्मियों की बात है तो उसमें खीरा क्यूकम्बर जो हमें रस्ते में मिलता था हम खाते हुए जाते थे
0: और वहाँ पे दोस्त बन जाते थे।
1: एक वो खूबसूरत सा जो सफर वो रहता था वो आपकी वजह से मुझे लगता है आज मेरे बचपन की याद मुझे
0: सच पूछिए तो जी लगता था कि छुट्टी बीते ना और फिर से स्कूल ना जाना पड़े गर्मियों की छुट्टी में। ये बात
1: छुट्टी पे हाँ। वो बात मुझे जरूर याद आई। सो रवि थैंक यू, और आपने बहुत अच्छी टिप दी कि एसी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना
0: और साथ ही साथ तो हम अपना तो ख्याल रखते हैं लेकिन इस मौसम में पशु पक्षी जो सड़कों पे रहते हैं या जो बर्ड्स हैं उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। आमतौर पर ये हमारे परंपरा में है, आप गांव में देखें यहाँ पर भी देखें तो लोग रखते हैं, लेकिन खास तौर पर याद दिलाना जरूरी होता है कि अगर हम अपना ख्याल रख रहे हैं तो साथ ही साथ पशु पक्षियों का जो बर्ड्स हैं उसके लिए हम पानी कहीं खुले में वो जहाँ आते जाते हो जहाँ हमें पता होता है हमारे वो कहाँ आते जाते हैं तो वहाँ अगर हम पानी रख दें तो उन्हें भी प्यास लगे तो एक किसी की सहायता हो सकती है। जी
1: आपने बहुत अच्छा ये कहा कि पानी तो हमें जरूर रखना चाहिए। कई बार आप देखेंगे ना कि गर्मियों जब बहुत ज्यादा धूप हो जाती है तो कई बार वो जो स्ट्रे किटन्स होते हैं कैट्स होते हैं डॉग्स होते हैं वो आपकी गाड़ी के नीचे गर्मी से बचने
0: गर्मी से बचने के लिए
1: हाँ, छुप जाते हैं और अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करते हैं। तो एक बात का जरूर ध्यान रखें क्योंकि मुंबई का समय इस वक्त सुन रहे हैं पूरी दुनिया में हमारी हमारे न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए जा रही है कि आप जब भी गाड़ी स्टार्ट करें तो एक बार गर्मी में जरूर नीचे
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: पशु या पक्षी उसमें गर्मी से बचने के लिए बैठा ना हो।
0: हमें अपने साथ दूसरों का ख्याल तो रखना ही होता है। इस मोड़ पर उदित नारायण साहब की आवाज आप तक पेश कर रहा हूँ, बने रहिए कार्यक्रम नमस्ते भारत में आकाशवाणी FM रेनबो के साथ।

ने आप पर डाल दी। प्रॉब्लम वो नैरो लेंसेस थे जिससे सोसाइटी ने तुम्हें देखने पर मजबूर किया, और उस लेंस को तोड़ना ही असली फ्रीडम है। उसको ब्रेक कर दो, उस लेंस को ब्रेक कर दो। कहीं ना कहीं जो है अपीयरेंस ने आइडेंटिटी से ज़्यादा लाउड होना सीख लिया, और इसी नॉइस में हम अपनी असली पहचान को है ना खो देते हैं। तो चलिए फिर आज हम डिसाइड कर ही देते हैं कि हम अलग तरीके से जो है, अगर किसी को कुछ कहना है तो अलग तरीके से कहेंगे, क्योंकि वर्ड्स भी किसी को हील या हर्ट कर सकते हैं, है ना। और हम अलग तरीके से देखेंगे चीज़ों को, और ख़ुद को भी उसी काइंडनेस से देखना सीखेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम बॉडी शेमिंग कल्चर से ब्रेक फ्री करेंगे, ताकि जो अगली जनरेशन आए वो खुद को कम ना महसूस करे बल्कि पूरा महसूस करे। और ये कई सालों से ये बॉडी शेमिंग की परंपरा चलती हुई आई है, जो कोई अच्छी परंपरा नहीं है हम कह सकते हैं, है ना। और हमने आपने कई लोगों ने जो है वो अपने आस पड़ोस में या ऐसे फैमिली फंक्शंस में भी देखा होगा, सुना होगा कि बहुत ही कैजुअली कुछ भी रिमार्क पास कर देते हैं बिना ये सोचे कि सामने वाले को कैसा फील होगा। तो इसी सारी सोच से, इसी सारी थिंकिंग से जो है वो ब्रेक फ्री होना है। और अगर आपने कहीं किसी को ऐसे बोलते हुए सुन लिया, किसी को बॉडी शेम करते हुए सुन लिया, तो आप जाएंगे उनको समझाएंगे कि ये देखें ये बहुत आउटडेटेड चीज़ हो गई है, अब ऐसा करिएगा नहीं। आप खुद को यूं तो जवान समझते हैं, मैं अभी भी इस उम्र में भी मैं बहुत जिंदा दिल हूं, और उस जिंदा दिली में आप कुछ भी बोल देते हो किसी को तो। लेकिन आप जब इस तरह की बातें करते हो तो पता लग जाता है कि आपकी सोच कितनी पुरानी है और किस तरह की आप सोच रखते हैं। तो इस तरह से आप समझा सकते हैं उन्हें, है ना। तो जी, इसी के साथ ब्रेक फ्री को यहीं रोकने का वक्त हो चला है। आपको बता दें कि 12 बजे आप न्यूज़ सुनेंगे, और 12:02 पर म्यूज़िक कैफ़े ओपन हो जाएगा, तो वहाँ आइएगा ज़रूर। अभी के लिए जहाँ हम बॉडी शेमिंग की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ ये नहीं कि जब आप वेट गेन करते हो तब भी आपको लोग जो है वो नाम रखते हैं या आपको बातें सुनाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है जो काफ़ी दुबले पतले लोग होते हैं ना, उनको भी काफ़ी ट्रोल किया जाता है, अलग अलग बातें उनको सुनाई जाती हैं। जैसे कि इस गाने में भी, मतलब इस तरह के गाने बने, कभी बैठ के आप एक लिस्ट निकालो तो लगता है कि क्या क्या सोच के इन लोगों ने इस तरह के सॉन्ग्स लिखे होंगे। उस टाइम पे तो मतलब ऐसे था कि हाँ चल जाता है, चलो ये तो मजाक में लिख दिए हैं, पर अभी अगर सोचो तो कुछ बहुत ही ऐसा अजीब सा फील होता है। जैसे कि दिल फिल्म का गाना है, खम्बे जैसी खड़ी है लड़की है या छड़ी है, मतलब क्या ही। उदित नारायण गाएंगे, समीर ने इसे लिखा, आनंद मिलन की कॉम्पोजिशन। बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 FM रेनबो पर, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।

हर फिल्म की होती है एक कहानी और एक कहानी की भी होती है अपनी ही एक कहानी, मूवी माइलस्टोन। हिंदी फिल्म जगत की कुछ अद्वितीय फिल्मों की दास्तां पद्मश्री भावना सोमैया के साथ 15 फरवरी 2026 से हर इतवार दोपहर 1 बजे FM रेनबो 107.1 FM पर मूवी माइलस्टोन।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
1: आप सुन रहे हैं 107.1 MHz पर FM Rainbow और समय हो चुका है अब तक के कुछ मुख्य समाचारों का। सुवेंदु अधिकारी ने आज पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री तथा एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। महाराष्ट्र से उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोचीशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने मानवता की गहरी भावनाओं और संस्कृति के सर्वोच्च आदर्शों को अभिव्यक्त

शक्ति दी। और समाचार में आगे, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन अगले नौसेना प्रमुख होंगे। वाइस एडमिरल स्वामीनाथन नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त होंगे। वाइस एडमिरल स्वामीनाथन फिलहाल पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। और समाचार के अंत में, दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आधुनिक डाकघर डाक विभाग द्वारा विकसित की जा रही नई कार्य संस्कृति को दर्शाते हैं, जिसमें तकनीक, दक्षता, पारदर्शिता और जन सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। अंधेरी रेलवे स्टेशन डाकघर में नवीनीकृत फ्यूचर रेडी के उद्घाटन समारोह में वे बोल रहे थे। प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसार समाचार का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम के लिए बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी पर।

लकीज फिल्म से सुना आपने ये गाना, लता दीदी या दान सामी की आवाज़ें, समीर ने इसे लिखा, दान सामी की कॉम्पोजिशन। आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप, और जी म्यूज़िक कैफ़े में आपको ओपन ये जो आपको वेलकम करते हैं कि म्यूज़िक कैफ़े 12 से 1 के बीच में ही सिर्फ ओपन रहता है, और मतलब ये जो लम्हे हैं उसको बस हमने समेट लेना है ना। म्यूज़िक कैफ़े में जो है हम बाहर की दुनिया से थोड़ा जो है वो हट के एक टाइम के लिए बैठ जाते हैं, और बाहर की दुनिया भले ही कितनी तेज़ हो है ना, अंदर का समय जो है थोड़ा धीमा होता है। यहाँ हर कप कॉफ़ी के साथ कोई ना कोई कहानी जो है बैठी हुई आपको नज़र आती है। तो चलिए आज हम सुनते हैं कि कुछ ऐसे ही छोटे छोटे लम्हे जो हमारे कैफ़े में आए और बिना शोर किए बस दिल में रह गए, उन्हीं को हम देखेंगे और उन्हीं की कहानियाँ जो है आप तक पहुँचाएंगे। अभी के लिए तो आएँ आप तक पहुँचाते हैं एक और प्यारा गाना, साथिया फिल्म का ही टाइटल ट्रैक, सोनू निगम की आवाज़, गुलजार साहब ने इसे लिखा, ए आर रहमान की कॉम्पोजिशन।

हर फिल्म की होती है एक कहानी और एक कहानी की भी होती है अपनी ही एक कहानी, मूवी माइलस्टोन। हिंदी फिल्म जगत की कुछ अद्वितीय फिल्मों की दास्तां पद्मश्री भावना सोमैया के साथ 15 फरवरी 2026 से हर इतवार दोपहर 1 बजे FM रेनबो 107.1 FM पर मूवी माइलस्टोन।

म्यूजिकली योर्स, आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप म्यूजिक कैफे. ये प्रोग्राम चल रहा है, बिल्कुल हमारा म्यूजिक कैफे ओपन हो गया है. और जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं जब आती हूँ म्यूजिक कैफे में तो हम ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि हम बिल्कुल ही कैफे में बैठे हुए हैं, है ना. हमारा कैफे है और यहाँ पर लोग आ रहे हैं और उनको मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ और उनकी कहानियाँ जो है फिर मैं आपको सुनाती हूँ. तो थोड़ी देर पहले एक लड़की आई थी, बाल थोड़े बिखरे हुए, हाथ में नोट

नोटबुक और आँखों में बिल्कुल ही थकान सी थी। वो बैठी, कॉफ़ी ऑर्डर की और फिर बस खिड़की के बाहर देखने लगी। कभी कभी वो पेन उठाती, कुछ लिखती, फिर काट देती थी, जैसे शब्द भी आज उसके साथ थोड़े कन्फ्यूज्ड हैं, है ना? होता है ऐसे कभी कभी, शायद कुछ बातें लिखी नहीं जाती, बस महसूस की जाती हैं। तो हम भी जो है अब और हमारी आगे बातों को आगे नहीं बढ़ाते हैं, बस इस गाने को सुनते हैं और उसको महसूस करते हैं जो कह रहा है, बोलना हल्के हल्के। रात फतेह अली खां, महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ें हैं, गुलजार साहब ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय की कॉम्पोजिशन, झूम बराबर झूम से आ रहा है ये गाना।

हाँ जी, सोनू निगम की आवाज़ में सुना आपने ये गाना चॉकलेट। इस फिल्म से मयूर पुरी ने इसे लिखा, प्रीतम की कॉम्पोजिशन। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो। शर्मीन संग शामिल हैं आप और ये टाइम है म्यूज़िक कैफ़े का। हाँ जी, 12 से 1 के बीच हर दोपहरी जो है ये म्यूज़िक कैफ़े ओपन हो जाता है, जहाँ हम आपको सुनाते हैं वो कहानियाँ जो हमारे कैफ़े में आती हैं, उनको हम देखते हैं और उनकी कहानियां आप तक पहुंचाते हैं। थोड़ी देर पहले एक मैंने आपको लड़की की बात बताई जो हमारे कैफे में आई थी, और कुछ देर बाद एक आदमी भी आया है, सूट टाई में बिल्कुल ही वो आ गए थे, लेकिन चेहरा जो है थोड़ा भारी सा था। वो बैठे, फोन साइलेंट पर किया और बस टेबल पर उंगलियां बजाने लगे। हर कुछ सेकंड में घड़ी देखते थे और फिर धीरे से मुस्कुरा भी देते थे, जैसे खुद को समझा रहे हों सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। कभी-कभी हम सबसे ज्यादा जो है उस इंसान से लड़ रहे होते हैं जो हमारे अंदर होता है, और उस ये जो लड़ाई होती है ना, यही बड़ी मुश्किल लड़ाई होती है। ऐसा मुझको लगता है कि आप दुनिया से तो लड़ सकते हैं या दुनिया की जो आवाज़ें हैं उसको एक टाइम तक आप जो है साइलेंट कर भी सकते हो, लेकिन आपके अंदर जो तलातुम चल रहा होता है उससे जो है आपने डील करना होता है, उससे फाइट करना होता है, और वो काफ़ी कठिन काम है ऐसे मुझको लगता है। तो हम गाने भी आपको सुनाएंगे। अब जैसे मैंने तलातुम का जिक्र किया तो आप समझ ही गए होंगे कि तलातुम आने वाला है गाना, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा स्पॉट आएगा और उसके बाद वो गाना मैं प्ले करूंगी, ठीक है। बने रहिएगा आप इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 FM रेनबो पर, बिकॉज बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।

श्रेया घोषाल, आतिफ असलम की आवाज़ें, रमैया वस्तावया से सुना आपने ये गाना। प्रिया सरेयान ने इसे लिखा था। आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप और जी म्यूज़िक कैफ़े ओपन है, जहां हम यहां जो लोग आते हैं उनको देखते हैं और उनकी कहानियां आप तक पहुंचाते हैं। तो कई सारे लोगों के बारे में हमने आपको बताया जो हमारे कस्टमर आए थे म्यूज़िक कैफ़े में, और वो क्या कर रहे थे, किस तरह से उनको देख कर क्या हमें लग रहा था, है ना। एक लड़की की बात कि जो बस नोटबुक लेकर बैठी हुई थी, कुछ लिखती थी, मिटा देती थी, जैसे उसके ख्यालात कुछ कंफ्यूज्ड से हो, पता नहीं चल रहा कि क्या करना है। फिर एक आदमी आया था बिल्कुल ही सूट बूट में, लेकिन चेहरे पे बिल्कुल ही थकान सी भरी हुई थी, और वो भी जो है ना, जैसे खुद को समझाने की कोई कुछ चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था, खुद को इनक्रेज करने की कोशिश कर रहा था। फिर एक टीनेज कपल आ गया हमारे कैफे में, दोनों एक ही कप में स्ट्रॉ शेयर कर रहे थे और किसी

भी ऐसी बचकानी सी बात पर हंस रहे थे. उनकी हंसी इतनी यू नो आसानी से वो किसी चीज़ पे हंस रहे थे जैसे दुनिया में कोई टेंशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, और बस वो दोनों हैं और उनके बीच वो कॉफ़ी का कप है जिसमें वो स्ट्रॉ डालकर दोनों पी रहे हैं. और ऐसे मोमेंट्स लगते हैं कि मतलब हम ही जो जिस तरह से एज बढ़ती जाती है लाइफ को उतना सीरियसली लेने लगते हैं कि जितनी लाइफ सीरियस होती नहीं है. तो ये जो प्यारा सा जोड़ा आया था उनके लिए ये गाना है, हनी हनी तेरा मेरा दिल से आ रहा है ये गाना. रूप जौहरी एंड कुणाल मिलके गाएंगे इसे, समीर ने लिखा, हिमेश रेशमिया की कॉम्पोजिशन. क्या ही सलमान खान हसीन लगे इस गाने में, वाह.

वो जो मैंने आपसे कहा ना कि एक टीनेज कपल आया था हमारे कैफे में, म्यूजिक कैफे में, वो भी एक दूसरे से यही पूछ रहे थे, प्यार हमें प्यार तुम कितना करते हो। दाग द फायर से सुना आपने ये गाना, और इतना रैन अलका याग्निक की आवाज़ें, समीर ने इसे लिखा था। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग।

शामिल हैं आप, और म्यूजिक कैफे में ऐसी ही कहानियां आते जाते रहती हैं। और एक आखिरी कहानी के बारे में बता दूं, कैफे के कोने में एक बुजुर्ग बैठे थे, उनके सामने कॉफी थी और हाथ में पुरानी सी फोटो। वो फोटो को देखते रहे, फिर धीरे से कॉफी का एक घूंट लिया, जैसे किसी पुराने समय को अभी भी गर्म रखना चाहते हो। तो ऐसी ही कई सारी कहानियां

ना उसको रिकॉल करने का उसको टाइम नहीं मिलता इतनी तेज रफ्तार जिंदगी में. तो इसीलिए ये हमारा म्यूजिक कैफे है, छोटा सा. यहाँ पे बस 1 घंटा ये ओपन रहता है कैफे. तो आज ऐसे ही अब वक्त हो गया है इसके कैफे को क्लोज करने का, शटर डाउन करने का. कुछ चेहरे, कुछ खामोशियां और कुछ मुस्कुराहटें जो बिना बोले बहुत कुछ कह गई यहाँ आई. फिर हम इनसे मिलेंगे और आपके सामने लेकर आएंगे, आप तक पहुंचाएंगे उनकी कहानियां जो म्यूजिक कैफे से होकर गुजरती हैं. और कॉफ़ी पीती हैं, कुछ देर के लिए सुकून का सांस लेती हैं और उसके बाद चली जाती हैं. तो जी, म्यूज़िक कैफ़े को यहीं रोकते हैं. आपको बता दें कि 1 बजे आप छत्रपति संभाजी नगर से मराठी में समाचार सुनेंगे और 1:05 पर आपका चहीता प्रोग्राम हिट एंड हॉट शुरू हो जाएगा, जिसमें आपकी पसंद के गाने हम प्ले करते हैं. आज मैं एक थीम लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए. यूजुअली एक सवाल लेकर आती हूँ, उसका जवाब देने पर आप अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजते हो, लेकिन आज हमारी एक थीम है, ठीक है? उसके बारे में मैं आपको हिट एंड हॉट में ही बताऊंगी. सो अभी के लिए जो अंकल आए थे, जिन जो यू नो एक पुरानी तस्वीर देख रहे थे और यादें ताज़ा कर रहे थे, उनकी और हम सब की यादों के नाम जो अक्सर हम जब पुराने एल्बम्स देख रहे होते हैं ना, तो वो चेहरे जो शायद हमारे बीच में अब रहे नहीं, या वो चेहरे जो हैं तो हमारे बीच लेकिन उनसे अब उस तरह के ताल्लुकात नहीं रहे, उन सारी यादों के नाम ये गाना हरिहरन जी की आवाज़, आनंद बख्शी साहब ने इसे लिखा, अनु मलिक की कॉम्पोजिशन.

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: बिल्कुल म्यूजिकली योर्स आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो। शर्मीन संग शामिल हैं आप और हिट एंड हॉट ये प्रोग्राम लेकर हाजिर हो गई हूँ मैं। इस प्रोग्राम में आपकी पसंद के गाने हम प्ले करते हैं, तो 70s से लेकर अब तक के जो भी नए गाने हैं उनमें से आज आपने ऐसे गाने रिक्वेस्ट करने हैं जिसमें ट्रेन नजर आई हो, बिकॉज आज है नेशनल ट्रेन डे। ठीक है, तो ऐसे गाने आपने भेजिएगा जो आपको पसंद है, जिस गाने में ट्रेन दिखाई दी हो या वो ट्रेन में ट्रेन पर फिल्माए गए हो या उस गाने में कहीं ना कहीं जो है वो ट्रेन का जिक्र हो, ट्रेन के पार्ट्स का जिक्र हो, है ना, इंजन वगैरह जैसे हो गया। तो इस तरह के सॉन्ग्स आपने हमें भेजने हैं 8657661071। 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपने नाम के साथ अपना गाना भेज दीजिएगा, वक्त बहुत कम रहता है इस प्रोग्राम में, सो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजें। अभी के लिए आए आपको सुनाते हैं तू तक तूतिया से ये आएगा गाना। स्वाति शर्मा, नवराज हंस ने गाया है, रैप किया है लिटिल गोलू ने, शबीर अहमद ने इसे लिखा, गुरिंदर सेगल की कॉम्पोजिशन।

चलिया। किशोर दा की आवाज, बख्शी साहब के अल्फाज, एस डी बर्मन जी की कॉम्पोजिशन, आराधना फिल्म से सुना आपने ये गाना। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल है आप। हिट एंड हॉट ये प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम आपके पसंद के गाने प्ले करते हैं, लेकिन आज हम एक थीम लेकर आए हैं आपके लिए, क्योंकि आज नेशनल ट्रेन डे है। सो आपने ऐसे गाने हमें भेजने हैं जिसमें ट्रेन नजर आई हो, या ट्रेन का जिक्र हुआ हो, या ट्रेन पर, ट्रेन के अंदर गाने फिल्माए गए हो, उसमें बस ट्रेन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो गाना आपने सुना उसकी रिक्वेस्ट हमें की थी वैदेही और प्रिया ने, और प्रथमेश डोंगरे ने एक गाना रिक्वेस्ट किया हुआ है, वो हम उनके लिए प्ले करते हैं, और वो है बंटी और बबली से ये गाना। उदित नारायण, सुनिधि चौहान, निहीरा जोशी की आवाजें, गुलजार साहब ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय की कॉम्पोजिशन, धड़क धड़क। मीनवाइल आप भी अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट जो है हमें भेजिएगा, लेकिन इतना याद रखें कि उसमें ट्रेन हो, ठीक है।

आज नेशनल ट्रेन डे है, सो ये गाना तो बनता ही था. और इस गाने की सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टें आई हैं आप लोगों की तरफ से. गुलजार साहब ने लिखा, ए आर रहमान की कॉम्पोजिशन, सुखविंदर सिंह, सपना अवस्थी की आवाज़ें. दिल से इस फिल्म से सुना आपने ये गाना. आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो. शर्मीन संग शामिल हैं आप. हिट एंड हॉट ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें मैंने आपसे पूछा है क्योंकि आज नेशनल ट्रेन डे है तो ऐसे गाने रिक्वेस्ट करिएगा जिसमें ट्रेन नज़र आई हो, ट्रेन पर या ट्रेन के अंदर फिल्माए गए हो, या ट्रेन के किसी पार्ट का जिक्र हुआ हो, इंजन हो, सीटी हो, है ना, इस तरह के. तो हमें छैया छैया इस गाने की रिक्वेस्ट की थी पंकज मोहड़ ने. प्रमोद ने अपने छोटे भाई जिंद्रा को ये डेडिकेट किया था. जय सखरे ने रिक्वेस्ट की थी इस गाने की. राम प्रजापति, दिग्दर्शन एंड कविता की तरफ से भी इस गाने की रिक्वेस्ट आई थी. सो आपको भी अगर कोई इस तरह का गाना सुनना है तो 8657661071, 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजिएगा. अभी के लिए आए आपको सुनाते हैं. विठल मुंगसे ने इस गाने की रिक्वेस्ट की है हमसे. चेन्नई एक्सप्रेस से आएगा ये गाना. अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा. विशालन शेखर की कॉम्पोजिशन और आवाजें हैं सुनिधि चौहान, अरिजीत सिंह, नीति मोहन की. कश्मीर में तो कन्याकुमारी. और आपको बता दें 1:30 बजे जो है आप हमारे न्यूज स्टूडियो से मराठी में समाचार सुन पाएंगे. और 1:40 पर हिट एंड हॉट लेकर, आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट लेकर मैं दोबारा हाजिर हो जाऊंगी. अभी के लिए कश्मीर में तो कन्याकुमारी.

तो मजे का गाना। ऋषभ ने रिक्वेस्ट किया था इस गाने के लिए। जालिम फिल्म से सुना आपने ये गाना। अलिशा शनॉय, अनु मलिक की आवाज़ें, हसरत जयपुरी साहब ने इसको लिखा है, अनु मलिक की कॉम्पोजिशन। आज हिटन हॉट में हम रेल से जुड़े, ट्रेन से जुड़े गाने आपसे मैंने आपसे मांगे हैं और इस तरह के गाने प्ले हो रहे हैं क्योंकि आज नेशनल ट्रेन डे है। तो मैंने आपसे पूछा है ऐसे गाने आप भेजिएगा जिस गानों में जो है, जिन गानों में ट्रेन नज़र आई थी, ट्रेन पर, ट्रेन के अंदर वो पिक्चराइज किए गए हों या गाना चल रहा है उसके आसपास कहीं ट्रेन हो, है ना। इस तरह के सॉन्ग्स मैंने आपसे मांगे हैं। पिंटो ने और दीपा पालकर ने अगले गाने की रिक्वेस्ट की है। ये गाना आ रहा है परिणीता से और कई सारे और लोगों ने भी छैया छैया इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है। अभी भी अगर जितने लोग जो हैं वो अभी अभी ट्यून इन कर रहे हैं वो सारे छैया छैया ही कह रहे हैं तो वो हमने प्ले कर दिया है। और जब वो गाना प्ले किया था मैंने तो फिरोज सिगनपुरिया जी कहते हैं ये तो मैंने भी रिक्वेस्ट किया था, तो हाँ जी उनकी रिक्वेस्ट पर भी प्ले हुआ है वो छैया छैया। अभी के लिए पिंटो और दीपा पालकर की रिक्वेस्ट पर आ रहा है परिणीता से ये गाना। सोनू निगम, श्रेया घोषाल की आवाजें हैं, स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा, शांतनु मैत्रा की कॉम्पोजिशन।

हाँ जी, और इसी के साथ प्रोग्राम हिट एंड हॉट को यहीं रोकने का वक्त हो चला है। मेरे जाने का समय आ गया है, लेकिन जाते जाते एक आखिरी गाना आप सभी के लिए मैं प्ले करूंगी। ये गाने की रिक्वेस्ट हमें शुभ लक्ष्मी जी ने की है, लेकिन उन सभी लोगों के लिए जिनके आज गाने प्ले नहीं हो पाए, हम प्ले करने वाले हैं किशोरदा की आवाज़ में दोस्त फिल्म से गाड़ी बुला रही है। आनंद बख्शी साहब ने लिखा, लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी की कॉम्पोजिशन। आज हिट एंड हॉट में मैंने से कहा था कि ऐसे गाने रिक्वेस्ट करें जिसमें ट्रेन का जिक्र आया हो, ट्रेन में या ट्रेन पर फिल्माए गए गाने हो, क्योंकि आज नेशनल ट्रेन डे है। और क्या ये एक से बढ़कर एक गाने आप लोगों ने रिक्वेस्ट किए हैं। एक बार आप लोगों के नाम ले लूं सभी के जो हमारे साथ जुड़े हुए थे सुबह से। विजय मोहबिया, कविता मोहबिया, उनकी फैमिली, राजेंद्र जुठानी जी, रजनीकांत पाटिल जी, विजयंत जी, और हमारे साथ जुड़े हुए थे जो है जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, बहुत सारे मैसेजेस आए इनके, डॉक्टर अंजू अंधेरी ईस्ट से हमारे साथ जुड़ी हुई थी, प्रदीप अनंत कृष्णन जी, और गाड़ी बुला रही है कि रिक्वेस्ट हमें अनिल जी ने विरार से भी की है, राम प्रजापति जी का मैसेज आया था, मुकुंद कुलकर्णी हमारे साथ जुड़े हुए थे, अशोक पाटिल जी वर्ली से, राजेंद्र जी न्यू पनवेल से हमारे साथ जुड़े हुए थे, प्रमोद जी प्रिया छत्तीसगढ़ से, शुभ लक्ष्मी, संजय दर्शन, और हमारे साथ जुड़े

पंकज मोहड़, अजय सकर इंदौर से, महेश बोहरा, प्रवीण जी, महेश शेट्टी, मेहर अरोड़ा, और हमें मैसेज किया था श्रवणी ने, और हमें मैसेज आया था अभिजीत का, श्रुति चिंदरकर का, प्रणव शिंदे, हमें मैसेज किया था विट्ठल जी ने, दिग्दर्शन कविता, वैदही, फिरोज सिगनपुरिया, राकेश माथुर, विजेंद्र जी अकोला से, और हमारे साथ जुड़े हुए थे कोयम्बदूर से, तमिलनाडु से हमें शाम ने मैसेज किया था सुशील यादव, रेणु यादव, इनकी फैमिली हमें सुन रही थी, दीपा पालकर ने हमें मैसेज किया था, पिंटो ने हमें कॉल किया था। अब मेरी आपकी मुलाकात होगी 11 तारीख को, बहुत जल्द ही हम मिलने वाले हैं, यही वाला शो 11 तारीख होगी, 11 बजे का शो होगा, तो ट्यून इन करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अभी के लिए आए आपको सुनाते हैं, गाड़ी बुला रही है और मैं जा रही हूँ अब जा रही है शर्मीन, अपना ख्याल रखें सामीन।

0: जी, उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों के रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
0: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
1: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जल डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है।

0: आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
1: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। TVK को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हर फिल्म की होती है एक कहानी और एक कहानी की भी होती है अपनी ही एक कहानी, मूवी माइलस्टोन। हिंदी फिल्म जगत की कुछ अद्वितीय फिल्मों की दास्तां पद्मश्री भावना सोमैया के साथ 15 फरवरी 2026 से हर इतवार दोपहर 1 बजे FM रेनबो 107.1 FM पर मूवी माइलस्टोन।

0: Swanee FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी का आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल पर। शाम के ठीक 5:03 हो रहे हैं और ये वक्त होता है लव यू जिंदगी कार्यक्रम का। और आज इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं आपके साथ, आपकी आरजे दोस्त अमिता, जिसके साथ जिसके पास होता है एकदम रेनबो की तरह ही रंगीन पिटारा। और आज लव यू जिंदगी में क्या कुछ हम बातें करने वाले हैं, क्या कुछ खास गाने मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये सब कुछ पिटारा जैसे जैसे खुलेगा वैसे वैसे सारी बातें और सारे गाने आप तक पहुँचेंगे। फिलहाल इस वक्त हो जाइए तैयार, शनिवार का दिन है और थोड़ा सा रिलैक्स। यूँ तो कहते थे पहले, हम ये मानते थे कि भाई रविवार का दिन होता है अपने आप को रीसेट करने का दिन, लेकिन अब रविवार तो बस चिंता में गुजर जाता है कि बस कल तो सोमवार है, इसीलिए अब रविवार की वो सारी जिम्मेदारियां शनिवार ने संभाल ली है। शनिवार का दिन होता है एकदम फुल ऑन हैपनिंग वाला दिन, चाहे घर के लिए ग्रॉसरी खरीदनी हो, घर वालों के साथ बैठकर शाम की चाय पीनी हो, या फिर खुद अपने आप को थोड़ा सा रीसेट करना हो।

सोनू निगम और सुनीति चौहान की आवाज़ों में ये गीत और ये इस मीठे से गीत से भाई बहुत सारे बातें और बहुत सारी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। हो जाते हैं कई बार ऐसे शख्स, ऐसा कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में आ जाता है जब ज़िंदगी को एक बार फिर से लव यू ज़िंदगी कहने का मन कर जाए। और कुछ बार, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा शब्द आपको मिल जाए कि फिर से वो जिंदगी से प्यार करना सिखा दे। 5:10 का वक्त, दोस्तों सुन रहे हैं आप कार्यक्रम लव यू जिंदगी अपनी आरजे दोस्त अमिता के साथ। और जैसे मैंने कहा कि कभी कभी कुछ ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों जो हमें थाम लेते हैं, थोड़ा सोचने पर और ठहरने पर मजबूर कर देते हैं। और आखिरकार मैं ये सारी बातें, शब्दों की बातें आज आपसे क्यों कर रही हूँ यहाँ लव यू जिंदगी कार्यक्रम में, वो इसलिए क्योंकि बस अभी 2 दिन पहले ही मुलाकात हुई एक शख्स के साथ। और बातों ही बातों में, मतलब वो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं मेरे, और बातों ही बातों में उन्होंने अपनी गोवा ट्रिप का जिक्र किया और एक शब्द जो उन्होंने ख़ास तौर से बताया, और मुझे लगा कि अरे इस शब्द के बारे में तो आप लोगों से बातें ज़रूर करनी चाहिए। और वो शब्द है सुजगात, एक ऐसा शब्द जो अपने आप को, अपने आप में न जाने कितनी सारी बातें और कितना गहरा अर्थ समेटे हुए है। गोवा की पृष्ठभूमि से आता ये शब्द सुजगात। वैसे क्या आपको पता है इस शब्द का मतलब क्या होता है? अगर पता है तो ज़रा 8657661071 यानी कि 8657661071 इस नंबर पर मैसेज करिए और हमें बताइए कि क्या है आखिर सुजगात का मतलब।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल और कार्यक्रम चल रहा है लव यू जिंदगी। और आज लव यू जिंदगी कार्यक्रम में हम जरा ढूंढ रहे हैं आखिर उस शब्द का मतलब जो है सुजिगात। और सुजिगात का मतलब अगर आपको पता है तो जरा आप भेज दीजिए। और कुछ लोगों के, कुछ हमारे श्रोताओं के मैसेजेस भी हम तक आ गए हैं। विजेंद्र खटोल अकोला से लिखते हैं कि भाई गाने उन्हें बहुत पसंद आ रहे हैं। साथ ही साथ पंकज मोहड़ लिखते हैं कि सुजिगात का मतलब होता है सुंदरता या सौंदर्य। भाई अब किसका क्या मतलब, सही मतलब क्या है वो तो मैं थोड़ी देर के बाद ही बताऊंगी। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया है तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के उस पार बहुत सारी बातें और भी होंगी।

प्रदीप अनंत कृष्णन जो हैं वो लिखते हैं कि भाई उन्हें गाने बहुत पसंद आ रहे हैं, और वहीं साथ ही साथ प्रकाश शिंदे का मैसेज आया है और वो लिखते हैं कि इन्होंने शायद शब्द इन्होंने दूसरा सुन लिया है, मैंने पूछा था सोजिकात, इन्होंने सुजिका नाम शायद सुन लिया है, और ये लिखते हैं कि सुजिका एक स्त्री का नाम है जिसका अर्थ होता है प्यारा छोटा बच्चा, और ये सुंदरता और अनुग्रह का प्रतीक होता है। लेकिन प्रकाश जी, मेरा शब्द सुजिका नहीं है या सुजिका भी नहीं है, मेरा शब्द है सोजिकात, और सोजिकात ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, आप ये कह सकते हैं, या अगर आप किसी भी गोवन व्यक्ति को पूछेंगे जो वहाँ के रहवासी हो गोवा का, तो वो कहेगा कि भाई ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि हमारे जीवन जीने का तरीका है, और इस शब्द के अर्थ पर हम और भी ज़रा गहराई से विचार करेंगे। एक और मैसेज आया है, और ये मैसेज आया है वालकेश्वर से जितेन मेहता का, और ये लिखते हैं कि भाई इसका मतलब होता है कि एक तरीके से कंटेनमेंट, आत्मसंतुष्टि और स्लोप, जो स्लो पेस लिविंग होती है उस पर फोकस करना, छोटी छोटी चीजों में आनंद लेना। अब सुजगात का मतलब क्या है, सोचिए ढूंढिए। फिलहाल अपने पिटारे से ढूंढ कर ला रही हूं मैं ये अगला गीत आपके लिए।

हर फिल्म की होती है एक कहानी, और एक कहानी की भी होती है अपनी ही एक कहानी। मूवी माइलस्टोन, हिंदी फिल्म जगत की कुछ अद्वितीय फिल्मों की दास्तां, पद्मश्री भावना सोमैया के साथ 15 फरवरी 2026 से हर इतवार दोपहर 1 बजे एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर मूवी माइलस्टोन।

0: कभी खट्टी मीठी तकरार,
1: जब तुम चाहो पास आते हो,
0: कभी बे इंतहा प्यार, कभी चुलबुली सी शरारत, तो कभी मासूमियत बेशुमार।
2: ये है अनोखे रंगों वाला
0: FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर,
2: दिल से
0: दिल तक
1: मन वाला गे।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लव यू जिंदगी अपनी आरजे दोस्त अमिता के साथ, और पूछा है मैंने सुजगात का मतलब, और संजय पाटिल का मैसेज आया है, लिखते हैं शुभ संध्या, और साथ ही साथ प्रदीप अनंत कृष्णन जो हैं उनका एक बार फिर से मैसेज आया है। अच्छा, इन्होंने बस इन जनरल कुछ बातें लिख दी हैं कि भाई जब आप का माइंड जो है वो स्ट्रेस फ्री रहता है तो आप और भी अच्छे से सोच सकते हैं। बात तो सही है, लेकिन फिलहाल प्रदीप जी पूछा कुछ और गया था। प्रवीण वहीं लिखते हैं कि सोजेगात का मतलब होता है शांत, स्थिर, तनाव मुक्त, एक सुकून वाली जिंदगी, आराम, संतोष, सुकून, बेफिक्र, मौज में जीना। वहीं दीपा पालकर लिखती हैं कि सोजेगात एक गोवन शब्द है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और आगे लिखती हैं कि इसका मतलब होता है आराम और टेंशन फ्री जीवन, और गोवा में लोग जो है ज़्यादातर आराम से उठते हैं, आराम से अपना जीवन जीते हैं। आगे लिखती हैं कि मेरे बचपन की छुट्टियां गोवा में ही बीती थी और मैं हमेशा से सोजेगाद जीवन जीती हूँ। दीपा पालकर शायद समझ गई हैं कि आज लव यू जिंदगी कार्यक्रम में आखिर किस तरह की बातें हम और किस दिशा में बेसिकली हम जा रहे हैं। वही विजेंद्र घटोल अकोला से लिखते हैं, अच्छा इन्हें गाने की प्लेलिस्ट बहुत अच्छी लग रही है, सो धन्यवाद। वहीं रजनीकांत रघुनाथ पाटिल वार्ड 1 से हमारे साथ बने हुए हैं। विकास का मैसेज आया है

देवी मुंबई से, और लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत गीत सुना रही हैं आप, सो थैंक यू सो मच। और अब आते हैं, लौटते हैं एक बार फिर से अपने शब्द सोजेकार पर। दोस्तों, आज की भागती दौड़ती दुनिया में जहां मोबाइल की बैटरी से ज़्यादा जल्दी हम इंसानों की बैटरी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि बस कुछ घंटे भी अगर हमने काम कर लिया तो फिर लगता है कि उफ कितना स्ट्रेस, कितनी भाग दौड़ कर ली है। जहां हर किसी के पास काम तो बहुत होता है लेकिन टाइम, वक्त बहुत ही कम होता है, और ऐसे समय में एक शब्द जो बार बार दिल को छूता है और वो शब्द है सोजेकार। दोस्तों, गोवा सिर्फ एक जगह नहीं, वो एक एहसास है जहां घड़ी थोड़ी सी धीमी चलती है और लोग जिंदगी को थोड़ा ज्यादा महसूस कर पाते हैं, या यूं कहूं कि जिंदगी के स्वाद को थोड़ा ज्यादा अच्छे से चख पाते हैं। शायद इसी का नाम है सोजेकार।

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात हाऊस लिस्टिंग आणि हाऊसिंग सेन्सस म्हणजे आपल्या आवाजाची गणना होईल. तुमच्या सहभागाने हे यशस्वी करूया. प्रत्येक व्यक्ती जोडली गेले पाहिजे, प्रत्येक घर जोडले गेले पाहिजे आणि देशाने पुढे गेले पाहिजे. जनगणना 2027 आपली आहे. जनगणना आपली आहे.
1: दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लव यू जिंदगी ओनली ऑन एफएम रेनबो, जो है म्यूजिकली योर्स. और यहाँ मैं हूँ आपके साथ, आपकी आरजे दोस्त अमिता. और आज बात कर रहे हैं सुजकात, उस शब्द की. दोस्तों, गोवा की संस्कृति से निकला ये खूबसूरत सा शब्द सुजकात, यानी आराम से जीना, हर पल को महसूस करना, जीवन को सिर्फ दौड़ नहीं बल्कि एक सफर मानना. लेकिन इन सारी बातों में असल सवाल तो ये है कि क्या आज हम सच में सुजगात जी पा रहे हैं? क्या आज हम सच में इस शब्द को जी पा रहे हैं? सुबह आँख खुलते ही मोबाइल, व्हाट्सएप, मेल्स, टारगेट्स, डेडलाइंस और न जाने कितनी ही सारी मशक्कतें. और अगर महिलाओं की बात करूं तो एक सबसे बड़ा सवाल कि आज खाने में क्या बनाना है, बच्चों को टिफिन में क्या देना है, रात में क्या बनेगा, उफ बहुत सारे सवाल जो है सुबह आँख खुलते ही सामने रहते हैं. और फिर वही एक अंतहीन सी दौड़. और आजकल आपने तो ये भी देखा होगा कि लोग जो हैं, या तो खाना खाते समय भी उनके एक हाथ में मोबाइल होगा और एक हाथ से वो खाएंगे, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बस जल्दी जल्दी खाना खाना चाहते हैं ताकि वो अगली मीटिंग के लिए कहीं देर ना हो जाए, या तो बस कि कहीं उनका वो फेवरेट सीरियल कहीं छूट ना जाए. पर खाना जिसने बनाया, ना तो उसकी तारीफ हुई, ना तो उसके स्वाद को देखा गया, किसने परोसा वो देखा गया, ना ही उसके उसे दो शब्द थैंक यू के कहे गए. कभी सोचा है कि आखिर हमने आखिरी बार बिना किसी जल्दी के चाय की वो चुस्की कब ली थी, कब उसे एकदम तसल्ली से आराम से पिया था? बारिश को बस देखा कब था और कब आखिरी बार असल में महसूस किया था? या फिर अपने माता पिता के साथ बैठकर बिना मोबाइल को छुए बस उनसे उनके मन की बात पूछी थी? आखिर कब किया था ये सब, सोचिए जरा. सोजेगाद हमें बस यही सब सिखाता है कि अभी देर नहीं हुई है, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा.

अलका याग्निक, बाबुल सुप्रियो की आवाजों में चोरी चोरी फिल्म का ये गीत ओनली ऑन एफएम रेनबो, म्यूजिकली योर्स। दोस्तों, बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने मैसेज करके बता दिया कि भाई सुजगात शब्द का मतलब क्या है, और कुछ लोगों के जो जवाब थे उसमें ये भी झलका कि भाई गोवा में जो है बड़े आराम की ज़िंदगी जीते हैं लोग। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि सुजगात आलस नहीं है, ये जीवन को महसूस करने की कला है। ये एक ऐसा ठहराव है जो हमें अंदर से टूटने नहीं देता, क्योंकि आप ही सोचिए ना, लगातार भागती हुई इस ज़िंदगी में कई बार हम खुद भी एक मशीन ही बन जाते हैं। और शायद इसी वजह से आज के इस टाइम में, और ख़ास तौर से अगर कहूँ तो महानगरों में, एंजाइटी बहुत बढ़ रही है, रिश्तों में दूरी बहुत बढ़ रही है। हमारे चेहरे पर अब वो पहले जैसी मुस्कुराहटें थोड़ी कम ही खिलती हैं। लेकिन सोजगाद हमें सिखाता है कि कभी कभी रुकना भी ज़रूरी है, समुद्र की लहरों की तरह जो हर बार किनारे तक आकर थोड़ा ठहरती है और फिर लौट जाती है। तो आज बिना किसी वजह के जरा आसमान की ओर देखिएगा, अपना बस पुराना पसंदीदा कोई गाना सुनिएगा, या फिर किसी अपने को फोन कर दीजिएगा और कहिएगा कि बस तुम्हारी याद आ रही थी तो इसीलिए फोन कर दिया। और या फिर बस खुद के साथ बैठिएगा, खुद से मुलाकात कीजिएगा, क्योंकि जिंदगी सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं मिली है, उसे महसूस करने के लिए मिली है, खुशी से जीने के लिए मिली है। और शायद यही है असली सोजगात।

एक गोवा वाली जो फील है, जो थोड़ी सी मस्ती है, वो भी तो होनी चाहिए। कविता कृष्णमूर्ति, श्रद्धा और साथियों की आवाजों में खामोशी द म्यूजिकल फिल्म का ये गीत। फिर मिलेंगे दोस्तों, नई बातें, नए एहसास और इसी प्यार के साथ, जिसके साथ हम कहेंगे लव यू जिंदगी।

और दोस्तों बस अब लव यू जिंदगी कार्यक्रम को भी मैं समेटती हूँ इस आखिरी गीत के साथ. जब आज शब्द था एक गोवन शब्द सुजगाद, तो थोड़ी सी

दोस्तों बता दें आपको कि ठीक 6:05 पर आप सुनेंगे हमारे नागपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचार। मैं लौटूंगी ठीक 6:15 पर लेकर कार्यक्रम अंदाज़े बयां।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: दोस्तों नमस्कार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल पर। शाम के ठीक 6:16 हो रहे हैं और आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम अंदाजे बयां। और आज इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी आरजे दोस्त अमिता।
2: देखने चला एक सपना।
3: Streets we have never walked on, windows we have never opened, hands we have never held, dreams we shall never, never see again.

0: I hear those strange whispers again.
1: हर फिल्म की होती है एक कहानी, और एक कहानी की भी होती है अपनी ही एक कहानी। मूवी माइलस्टोन, हिंदी फिल्म जगत की कुछ अद्वितीय फिल्मों की दास्तां, पद्मश्री भावना सोमैया के साथ 15 फरवरी 2026 से हर इतवार दोपहर 1 बजे FM रेनबो 107.1 FM पर मूवी माइलस्टोन।

हाथ छूटे भी तो भी रिश्ते नहीं छूटा करते। और बस यही कहूंगी मैं हमारे सभी सुनने वालों को कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रिश्तों में भी दूरियां आ ही जाती हैं, दिल के कितने भी करीब हों, पर कई बार कुछ छोटी सी बात और बस रूठ जाते हैं हम। पर दिल के जो ये रिश्ते होते हैं ना, वो इतने मजबूत होते हैं कि लाख मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाए या मिसकम्युनिकेशन हो जाए, पर बस जा करके एक बार उन्हें गले लगा लीजिए और फिर देखिए वो रिश्ता फिर से हरा हो जाएगा। 6:38 का वक्त, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम अंदाज़े बयां।

दोस्तों सुन रहे हैं आप कार्यक्रम अंदाज बयां और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे दोस्त अमिता। जिंदगी की सारी दौड़ अगर आखिर में ठहर ही जानी है तो फिर ये भाग दौड़ किस लिए, ये चाहते किस लिए, जब हर चीज को छोड़ ही जाना है तो हासिल क्या, महरूमी क्या, जीत क्या और हार क्या। शायद असली बात ये नहीं है कि क्या मिला, बल्कि ये है कि सफर में क्या महसूस किया। किसी की मुस्कान बन पाए या नहीं, खुद से सच्चे रह पाए या नहीं, क्योंकि अंत में हिसाब चीजों का नहीं होगा, एहसासों का होता है। कितना जिया, कितना समझा और कितना दिल से जिया, बाकी सब तो बस नाम के मायने हैं। वरना सच में हासिल भी खाली और महरूमी भी खाली ही रह जाती है। जिंदगी की सारी दौड़ अगर आखिर में ठहर ही जानी है तो फिर ये भाग दौड़ किस लिए, ये चाहते किस लिए।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: दोस्तों नमस्कार. शाम के ठीक 7:11 होने को है और शुरू करते हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम हम तुम,

जहां आपकी फरमाइश पहुंचती है हम तक और उसके बाद आपके पसंद किए हुए गाने हम पहुंचाते हैं आप तक। और अपनी पसंद के गाने हम तक पहुंचाने के लिए यानी कि अपनी फरमाइश करने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं 8656661071 यानी कि 8657661071। मैं हूं आपकी आरजे दोस्त अमिता लेकर अपना सुनहरा पिटारा। और कार्यक्रम हम तुम की शुरुआत विजेंद्र घटोल जिनकी पसंद आई है अकोला से चालबाज फिल्म के इस गीत के साथ।

अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ों में चालबाज फिल्म का ये गीत, और इस गीत में एक और पसंद जुड़ रही है और वो है पंकज मोहड़ की, और इनकी ये पसंद आई है अमरावती से। और अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनाती हूँ आपको हम तुम कार्यक्रम में अगली पसंद, जो आई है मुंबई मानखुर्द से प्रकाश शिंदे की, और फिल्म है सनम। और एक और ख़ास बात जो मैं आप सभी के साथ बांटना चाहती हूँ वो ये कि प्रकाश शिंदे जब भी हमें मैसेज करते हैं, ख़ास तौर से जब अपनी पसंद के गानों को वो सुनना चाहते हैं, तो वो बाकायदा बताते हैं कि भाई इस फिल्म का आप सुनवा दीजिए, और इस फिल्म के पीछे की जो कहानी होती है कि आज के दिन उस फिल्म ने कितने साल पूरे किए, वो भी बाकायदा बताते हैं। और सनम फिल्म के बारे में लिख रहे हैं कि आज इस मूवी को रिलीज होकर पूरे 29 साल हो गए हैं। सुप्रकाश शिंदे, आपकी पसंद पर सनम फिल्म का ये गीत आपके लिए।

7:25 का वक्त सुन रहे हैं आप कार्यक्रम हम तुम और मैं हूं आपके साथ आप यारजे दोस्त अमिता। साधना सरगम की आवाज में विश्वात्मा फिल्म का ये गीत और गीत की पसंद आई है इंदौर से भेजने वाले हैं अजय साकरे और साथ ही साथ इस पसंद में एक और भी नाम जुड़ रहा है, इनफैक्ट दो नाम और जुड़ रहे हैं, वाडवन से रजनीकांत रघुनाथ पाटिल और साथ ही साथ पंजाब से हरजिंदर छिंदा सीता जसवीर और गीता का।

अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों की आवाजों में धड़कन फिल्म का ये गीत, जिसकी रिक्वेस्ट आई थी उत्तर प्रदेश से और भेजने वाली हैं यास्मीन, और साथ ही साथ पदमपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति, भूमिका अरोड़ा की भी फरमाइश इस गीत में शामिल हो रही है। और अब जो अगली फरमाइश, अगली रिक्वेस्ट हमारे पास आई है, वो आई है कल। दोस्तों आज है 9 मई, कल है 10 मई, और कल बहुत सारे लोग, या यूं कहूं कि हम सभी, एक बार फिर से मनाएंगे मदर्स डे। एक बार फिर से इसलिए क्योंकि हर दिन ही तो होता है मदर्स डे, बस कल हम शायद उसका इजहार करेंगे, तो क्यों ना उसकी शुरुआत हम आज से ही कर दें। और ऐसी ही कुछ बात जो है वो भेजी है जितिन मेहता ने, जो अपनी मम्मी रेखा मेहता के नाम एक गाना डेडिकेट करना चाहते हैं, और साथ ही साथ इसमें रिक्वेस्ट शामिल है निरंजन मेहता की भी। और जो गीत वो सुनना चाह रहे हैं वो है फिल्म दसवीदानिया का गीत, और साथ ही साथ बता दूं कि इस पसंद में बहुत सारी पसंद जुड़ी हुई है। विजेंद्र खटोल ने भी इस गीत को सुनना चाहा, साथ ही साथ फिरोज सिगनपुरिया और मुंबई अंधेरी से डॉक्टर अंजू की भी पसंद जो है इसमें शामिल हो रही है। और गीत सुनवाने से पहले बस एक लाइन कहूंगी, मांग लूँ ये मन्नत कि फिर यहीं जहां मिले, मांग लूँ ये मन्नत कि फिर यहीं जहां मिले, फिर वही गोद और फिर वही माँ मिले।

और हमारे जिन भी लिसनर्स ने इस गीत की फरमाइश की, भाई आप सबको भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि बड़े दिनों बाद दसविदानिया फिल्म का ये गीत आप लोगों के बहाने से एक बार फिर मुझे भी सुनने का मौका मिला। संजय दर्शन का मैसेज आया है, लिखते हैं कि भाई गुड इवनिंग, कड़कती धूप के साथ दोपहर भी गर्म थी और शाम का शांत और ठंडक देने वाले एक से बढ़कर एक सुकून वाला पूरा माहौल बन रहा है और उसके लिए सभी लोगों का धन्यवाद, क्योंकि एक से बढ़कर एक सुपरहिट गीतों की फरमाइश आ रही है और उसी में मैं भी बहुत खुश हूँ। सो संजय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने तुरंत आपको जो अच्छा लगा वो आपने बता दिया। वैसे हमारे एक और लिस्टनर हैं, उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया लेकिन ये मैसेज ज़रूर दे दिया कि भाई आज बहुत बिजी हूँ तो फिलहाल हम तुम कार्यक्रम में मैं आपको सोमवार से ही साथ दे पाऊँगा। और दोस्तों ये भी है दिल से दिल का रिश्ता, दिल से दिल का कनेक्शन। फिलहाल बढ़ रहे हैं आगे कार्यक्रम हम तुम में, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।

कैलाश खेर और साथियों की आवाजों में देव फिल्म का ये गीत और इस गीत की रिक्वेस्ट हम तक पहुंचाई थी घाटकोपर से पिंटू ने। दोस्तों घड़ी इशारा कर रही है कि अब मैं कार्यक्रम हम तुम समेटने की शुरुआत भी कर दूं, और उससे पहले बहुत सारे हमारे जो श्रोता हैं जो आज हमारे साथ यहाँ कार्यक्रम में बने रहे उन सब के भी तो नाम लेना बहुत ज़रूरी है। महेश शेट्टी का मैसेज आया, साथ ही साथ मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति, भूमिका अरोड़ा ने भी हमारा साथ दिया, गंगानगर राजस्थान से, साथ ही साथ राकेश माथुर का भी मैसेज

सजाया है, लिखते हैं कि भाई दिन में 11 से 2 और शाम को 5 से 8 पूरे 6 घंटे कई बार जो होते हैं वो कुछ गाने रिपीट होते हैं, और पर आज जो है कुछ अलग गाने सुनकर उन्हें भी अच्छा लगा है। धन्यवाद राकेश जी और विजेंद्र घटोल का मैसेज आया कोला से। साथ ही साथ हमारे साथ बने थे फिरोज सिकनपुरिया, और साथ ही साथ इनके जो व्हाट्सएप वर्ल्ड म्यूजिक के ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं वो भी हमें बाकायदा सुन रहे हैं। पंकज महोट का मैसेज आया, सुशील यादव, रीनू यादव इनका मैसेज आया है उदयपुर राजस्थान से, और साथ ही साथ इनके साथ हैं महिता यादव और नमिता कार्तिक यादव भी। संजय दर्शन का मैसेज हम तक मिला, मैसेज मिला श्रीधरन बालचंद्रन का भी, अंधेरी ईस्ट से डॉक्टर अंजू ने हमें मैसेज किया, और अशोक पाटिल का भी मैसेज आया वर्ली कोली वाड़ा से, और लिखते हैं कि भाई आज प्रोग्राम जो है उस वो बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं अरविंद कुलकर्णी का भी हमें मैसेज प्राप्त हुआ, रजनीकांत पाटिल का मैसेज आया वार्ड 1 से, प्रकाश शिंदे ने भी मैसेज किया, और साथ ही साथ इन्होंने कॉल भी किया था और कहा था कि आज जो गीत आपने सुनवाए 5 से लेकर के 5 बजे वाले प्रोग्राम में लव यू जिंदगी, और साथ ही साथ अंदाजे पे आमे, सच मानिए अमिता जी जो आज दिन भर गर्मी बहुत लग रही थी ना, उन गीतों को सुनकर वो गर्मी भी कहीं ना कहीं छुमंतर हो गई। और प्रकाश आपके इस मैसेज को पढ़ करके हमें भी बहुत अच्छा लगा। अजय साखरे का मैसेज आया इंदौर से, और साथ ही साथ गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता ने भी हमें मैसेज किया, और साथ ही साथ हमारे साथ बने रहे सुहास और सविता पवार जुड़े पुणे से, और ये हैं हमारे श्रोता नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, तुलसी, दिशा, कीर्तन, लक्ष्मण, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, और एक और भी हैं ये हमारे श्रोता से, इन्होंने हाय लिख करके भेजा है, और ये हैं राहुल गवंडे। संजय पाटिल का भी मैसेज आया, ये आया है नसवाला चौक मलकापुर, संजय पाटिल और उषा पाटिल ने हमें मैसेज किया, और हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखिलाल वर्मा का भी मैसेज आया। मैसेज आया दीपा पालकर का मुंबई से, प्रवीण भी हमारे साथ बने रहे, और प्रणव शिंदे भी हमें बाकायदा 5 बजे से सुन रहे हैं, और मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता, और साथ ही साथ ये हैं गुजरात भरूच से राजू बेरावाला। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अब सुनाती हूँ मैं आपको कार्यक्रम हम तुम का आखिरी गीत फिल्म खलनायक से। इसी गीत के साथ दीजिए अपनी दोस्त अमिता को इजाजत, इस वादे के साथ कि बहुत ही जल्द होगी हमारी और आपकी अगली मुलाकात, और हमारी अगली मुलाकात तक रखिए अपना और अपनों का अच्छी तरह से ध्यान। खलनायक फिल्म का ये गीत जिसकी रिक्वेस्ट भेजी अरविंद कुलकर्णी ने।

तो दोस्तों आप कहीं भी मत जाइए, सुनते रहिए आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल जो है म्यूजिकली योर्स। और ठीक 8 बजे आरजे फली होंगे आप सभी के साथ लेकर कार्यक्रम रॉक विद द चॉक।

0: That's Billy Joel over there with his biggest number one. It went to number one in 27 countries on its initial release. And since then, it is also one of the most streamed love songs, the most radio-requested love songs in the history of music. One of the 10 biggest-selling love songs on the pop charts as well. Keep listening in to Akashwani's FM Rainbow channel on 107.1 MHz. It's time for the news. The news in Hindi is coming up right now at 8:45, followed by the news in English at 9 p.m. And then we'll be back with more fabulous music right here on this radio station. Keep listening in.
1: Don't go changing to try.
2: Namaskar. Akashvani se samachar sandhya ke saath main Akarshita Singh. शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली. तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया. कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे. कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे. प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया. और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता. और अब समाचार विस्तार से. पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ. राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई. इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं. शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
3: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए. ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की. बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 99 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है. कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है.

0: प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा।

कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान पीएमजीएसवाई के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवी ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम पीएमएलए 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। सीबीआई ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं, जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीईडीए ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। एपीईडीए के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट डब्ल्यू

0: वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमरीकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमरीका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमरीका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमरीका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमरीका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
1: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Shubhendu Adhikari takes oath as first BJP Chief Minister of West Bengal. 5 MLAs also sworn in as cabinet ministers. TVK Chief C. Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu with support of Congress, VCK, IUML and left parties. Set to take oath as Chief Minister tomorrow. India conducts successful flight trial of advanced variant of Agni missile with MIRV system. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects during his day-long visit to Karnataka and Telangana tomorrow. Enforcement Directorate arrests Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in alleged money laundering case. And in archery, India's Sahil Jadhav wins bronze medal in men's individual compound event at World Cup Stage 2 in Shanghai. Shubhendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office in secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtania, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President

0: साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे।

प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी,
1: आपकी वाणी आकाशवाणी। स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम रंगे महफिल में। दोस्तों, दिन भर की भागदौड़ के बाद जब शहर धीरे धीरे खामोश हो जाता है, तब जागती है रात, और रात में जागते हैं ढेर सारे एहसास। नमस्कार, अल्फाज एहसास और खामोशी की इस महफिल में आप सभी का स्वागत है, मेरे यानी कि विनीता बेदी के साथ। और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल, रात जो सवाल नहीं करती लेकिन सच सामने रख देती है।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

आकाशवाणी रेनबो पर आप हैं प्रोग्राम रंग महफिल में अपनी दोस्त विनीता बेली के साथ। दोस्तों, बहुत अकेला कर देती है, जाने कैसी ये रात होती है। बहुत अकेला कर देती है, जाने कैसी ये रात होती है। दिन में तो हम हंस लेते हैं, रात में फिर खुद से ही मिल लेते हैं। सच्चाई ये है कि तन्हाई भी सिर्फ उन्हीं को मिलती है। गौर फरमाइएगा, तन्हाई भी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके अंदर बहुत भीड़ होती है।

मक्ता पेश कर रहा हूँ। ये एक ऐसे शायर हैं जो वैसे अरब हैं, कुवैती हैं, लेकिन उनकी तालीम अलीगढ़ में हुई है। उर्दू शायरी का काफी शौक है उनको। खालिद उनका तखल्लुस है। खालिद ये हकी

रंग महफिल में आप हैं मेरे यानी कि विनीता बेदी के साथ। और जब भी घिरती है ये महफिल, मन में कई सारे सवाल आते हैं। कभी ये कि रात की तन्हाई कुछ ऐसा अंदाज लेकर आती है, रात वो वक्त जब यादें आवाज देती हैं, यादें जो नींद को न जाने कहां उड़ा देती हैं, जिसे कभी किसी की बाहों में सुकून मिला था वही दर्द अब शोर नहीं करता, बस चुपचाप अंदर बैठ जाता है। दोस्तों, पता है आपको, एक बात जो रह रह कर सालती भी है और सुकून भी देती है कि रात में आंसू आवाज नहीं करते हैं।

0: मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा है इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: एक जमाने से कहानी है, सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

रेनबो पर आप हैं विनीता बेदी के साथ प्रोग्राम रंग महफिल में। हम टूटे नहीं हैं दोस्तों, हम टूटे नहीं हैं, बस अब आवाज नहीं करते। हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह तय होती है। अगर आज की रात आपको भारी लग रही है तो यकीन मानिए आप अंदर ही अंदर बहुत ही मजबूत हो रहे हैं।

जो कहा नहीं गया वो रात समझ गई। इसी सुकून के साथ आज के रंगे महफिल को यहीं विराम देते हैं। आप सब खुद का ख्याल रखिए और याद रखिए, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। वो हर शख्स है आपके साथ जिसे आपकी परवाह है। फिर मिलेंगे रंगे महफिल में ही। अभी फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का। नमस्कार, शब खैर। विनीता को इजाजत दीजिए जल्दी ही दोबारा मिलने के लिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल R.N. रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को नबन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धने खाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा किया। श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री रवि रविशंकर के 70वें जन्म समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला परसद बिसेसर के साथ त्रिनिदाद और टोबैगो के नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप का वो स्थान जहां गिरमिटिया भारतीय मजदूर सबसे पहले त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। डॉ. जयशंकर ने नेल्सन द्वीप पर त्वरित प्रभाव परियोजना के लिए डॉ. कमला परसद बिसेसर के साथ भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि भारतीय सहायता से समर्थित ये परियोजना एक अमर यात्रा की साझा विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करेगी।

आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। 230 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स 152 पर ही सिमट गई। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से रविंद्र जडेजा ने सर्वाधिक 38 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 229 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिम राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। प्रस्तुत है कार्यक्रम जीरो आर शो। लीजिए प्रस्तुत है पहला गीत कुणाल गांजावाला की आवाज में। फिल्म है हॉलिडे।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
4: ठीक है।
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा है इनके नाम है, उसका जो खर्चा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को नवन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल एन रंगास्वामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति एन रंगास्वामी को उनके शपथ ग्रहण की तिथि से पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करती है। अधिसूचना के बाद उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने रंगास्वामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। रंगास्वामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच 7:30 बजे से खेला जाएगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम का सामना आज चीन से होगा, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिम राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रॉयलसीमा, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका आज बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: ये प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं, वो किसी और को चाहती है।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
0: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
7: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती,

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को नवन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला परसद बिसेसर के साथ ट्रिनिडाड और टोबैगो के नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप का वो स्थान है जहां गिरमिटिया भारतीय मजदूर सबसे पहले ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। डॉ. जयशंकर ने नेल्सन द्वीप पर त्वरित प्रभाव परियोजना के लिए डॉ. कमला परसद बिसेसर के साथ भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि भारतीय सहायता से समर्थित ये परियोजना एक अमर यात्रा की साझा विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने की और उनके आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को नबन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल N. रामास्वामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति N. रंगास्वामी को उनके शपथ ग्रहण की तिथि से पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करती हैं। अधिसूचना के बाद उपराज्यपाल K. कैलाश नाथन ने रंगास्वामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। रंगास्वामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु में तलिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला परसद बिसेसर के साथ त्रिनिदाद और टोबैगो के नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप का वो स्थान है जहां गिरमिटिया भारतीय मजदूर सबसे पहले त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। डॉ. जयशंकर ने नेल्सन द्वीप पर त्वरित प्रभाव परियोजना के लिए डॉ. कमला परसद बिसेसर के साथ भाग लिया। IPL क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल पर समय हुआ है 6:30 और अब शुरू होता है मिडनाइट मेलोडीज, जिसमें आप सुनेंगे नॉनस्टॉप बॉलीवुड हिट म्यूजिक। शुरुआत करते हैं KK और पलक मुछाल की आवाज में एकता टाइगर मूवी के इस गाने के साथ।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर समय हुआ है आधी रात के 3:30 और आप सुन रहे हैं मिडनाइट मेलोडीज। ऐसे ही नॉनस्टॉप हिट म्यूजिक गाने सुनते रहिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों सूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के

दूसरे दिन शिमोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे और वे कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल

ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल नबन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज चेन्नई पहुंचेंगे। विजय आज चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर उन्हें पद की शपथ दिलाएंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल एन रंगास्वामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति एन रंगास्वामी को उनके शपथ ग्रहण की तिथि से पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करती हैं। अधिसूचना के बाद उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने रंगास्वामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। रंगास्वामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए खरीद संबंधी अनुपालन दिशा निर्देशों की नियमावली लागू करके केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत बाहरी स्रोत और संविदा कर्मचारियों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य वेतन का समय पर भुगतान, सामाजिक सुरक्षा अंशदान का अनिवार्य भुगतान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन तंत्र सुनिश्चित करना है। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

गाने वो भी बिना रुके। तो बस इसी तरह गानों का मजा लेते रहिए और शुरुआत करते हैं सोनू निगम की आवाज में फिल्म जाने मन से इस गाने के साथ। ऐसे ही नॉनस्टॉप गाने सुनते रहिए।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर इस टाइम सुबह के 4:06 हो रहे हैं और जैसे कि आप सुन ही रहे हैं नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक और अब शुरू होता है सारेगामा जिसमें आप सुनेंगे

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर समय हुआ है सुबह के 4:58 और सारेगामा शो सुन रहे हैं आप, जिसमें नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक का आप मजा ले रहे थे। सुबह 5 बजे हिंदी में समाचार होंगे और बस थोड़ा सा समय है इस शो को पूरा होने का। तो अभी पेपॉन की आवाज में ये गाना।